0: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
1: Ready to switch over to something a little bit more mellow? When you're ready to switch gears, switch to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Available on DAB nationwide, on the Sunrise Radio app, and on sunriseradio.com.

0: होवे शायद तू ए क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: आ, आ, आ, ऐसे नहीं गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: The Love Lounge on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई। आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूजडे टू संडे, 10 डेज साउथ अफ्रीका एवरी मंथ फ्रॉम नवंबर टू मार्च। बुक बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ एंड गेट 200 ऑफ। विजिट sonatours.co.uk और कॉल 02089510111।
2: Do you know a British Asian entrepreneur, leader or changemaker who deserves to be celebrated? Nominations are now open at the Apex Awards. The Apex Awards UK honours the most outstanding British Asian business talent, innovators and community pioneers of our time. From first generation founders to established industry leaders, from community trailblazers to the next generation of talent, their moment is now. Nominate an exceptional business or individual today. Help us recognize the excellence shaping Britain's future. Visit apexawards.co.uk to nominate. Nominations will close soon. The Apex Awards, celebrating British Asian excellence. Radio partner Sunrise Radio, organized by Luminary Networks and White Tops Global.
3: Surrenderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Beck Theatre Hayes.

0: Motorway or with family and friends, there's something for everyone. For fantastic offers this summer, call Southall Travel on 0208 843 4444. That's 0208 843 4444. See you in Mauritius.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T&Cs apply. Hey!

बाटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह, तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा, उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।